0: 哎呀！
1: बटाटे का मतलब
2: पोटैटो, पोटैटो
1: मेरा छोटा सा
2: पोटैटो
1: पोटैटो
3: Don't move your head.